0: हम आपके पहचान लाती है 50 में ज्यादा बनाई सुनिए आपकी चीफ रंग रेडियो साथ और
1: शाम के बजे हैं।

0: Take a business piece to us. The archive location in rooms, learnings, specialists, products, the case of to promote business, the end customer. RTX Road, brought to you by Sopun 50 km mobility at the customer. Let's see, L5 to go in there and is on 3-4-0-2-3.
1: जगह है जिथे परिवार आपस विच जुड़े रह सकते ने अपनी रोजाना दी रूटीन बना सकते ने अते शुरू तो ही घर वर्गा महसूस कर सकते ने सिर्फ एक नवा भाईचारा ही नहीं तुहाडे भविख नूं उसारन दी एक जगह हक्सले दी खोज करो जिथे जीवन सही जगह स्थित है genesisland.com ते जाओ
2: Captain Pavo Sugar Videos in Panama City, 4-5-0-10. Yo, sir.
3: Mutant Share. Yes, sir. Yes, points.

0: column, visit the website deep.realtor.
1: Maxwell Central Day Realtor Mandeep Singh Gill, 4031768.
2: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए
3: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
2: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पक दिया।
3: ओहो तू हानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दीयां मिठाइयां अते केटरिंग भी कर दे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाह भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154 4310104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161।
4: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: तुहाडी ग्रोसरी दीयां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दीयां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
0: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
0: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वेयर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
0: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दीयां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
0: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। इना ही नहीं, इना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाई जा सकती ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।

रेडियो सरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियों नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन शुक्रवार मई महीने की 22 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम विच असीं बहुत सारियां खबरां ते चर्चा करनी है जी। अज दे प्रोग्राम विच सवाल नहीं होवेगा, इस वास्ते असीं माफी चाहुंदे आं। सोमवार तो सवाल जवाब वाला सिलसिला दोबारा कंटिन्यू करांगे। 5 बजे शान अली जी प्रोग्राम पेश करनगे। 8 बजे एक विशेष प्रोग्राम जिस विच एक विशेष गलबात किसान आगू जोगिंदर सिंह उग्राहां दे नाल पेश की जाएगी। 9 बजे पंजाब तो जतिंदर पन्नू जी नाल प्रोग्राम होगा। ये साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज के इस प्रोग्राम विच असी खबरां ते चर्चा जिहड़ियां ते करनी है उहदे बारे भी जानकारी आप जी नाल सांझी करदे आं। नाल दी नाल थोड़ी जी मौसम की गल भी कर लईए कि मौसम किहो जिहा

आज के प्रोग्राम में वर्ड्स ऑफ विजडम. वैसे तो विजडम की आजकल इतनी जरूरत है नहीं, सिर्फ इस्तेमाल की जरूरत है. विजडम है तो बहुत हमारे पास. एजुकेशन से रिलेटेड एक बात करना चाहूंगा. कहते हैं कि बच्चों में और परिंदों में फर्क सिर्फ एक है, वो ये है कि परिंदों के पास पर हैं और बच्चों के पास एजुकेशन. अगर परिंदों से पर ले लें और बच्चों से एजुकेशन ले लें तो दोनों हैंडीकैप हो जाएंगे, बिल्कुल अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे और उनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी. आज के माफ कीजिएगा, आज के प्रोग्राम में ये बात मैंने इसलिए की है कि आज प्रोग्राम में आगे चलकर नमल नॉलेज सिटी का जो इवेंट होने जा रहा है 6 जून को कैलगरी में, उसके हवाले से मैंने आपकी मुलाकात करानी है. हमारे जो यूथ की टीम है बड़ी डायनामिक सी, उसके 3 मेंबर मेरे पास मौजूद होंगे. 2 तो पहुंच चुके हैं और 1 मेंबर कहीं आसपास ही हैं स्टूडियो के. तो उनसे मैंने मुलाकात आपकी करानी है. इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हम जो एक्सपर्ट्स यहां पर आते हैं, हमारे बच्चे एक शिकवा हम ये करते हैं कि ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बैक होम्स की कल्चर से, जबान से, रिश्तों से और थिंग्स दैट मैटर्स टू अस. और दूसरी तरफ यह है कि बहुत सारे बच्चे यहां रहते हुए भी अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स, अपनी मनी खर्च करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनसे कहीं ना कहीं बैक होम में चीजें बेटर हो रही होती हैं. तो ये मौजूद 2 एतबार से जरूरी है. एक ये कि एजुकेशन क्यों जरूरी है और दूसरा ये कि वाई आर यू थिंक दोज जो नहीं पार्टिसिपेट करते वो क्यों नहीं करते और जो करते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज वो तो अब यहां रहते हैं, उन्हें जरूरत है नहीं ज्यादा. ये है आज के प्रोग्राम की थीम. प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पे बातचीत करेंगे और यूजुअली मिक्स ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द वीक और उसके साथ साथ कुछ देसी म्यूजिक आपकी नजर मैंने करना है. आपको लेके जाना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ. ये ना लगे कि हम बहुत ज्यादा आज बातें कर रहे हैं. बैक होम की बात की है तो ऐसे गाने जो नॉस्टैल्जिक होते हैं, जो आपको याद कराते हैं क्या पाएगा.

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं उन्हें आप हजारों बार सुन लें, जब जब सुने आपको मजा आता है, पैसा वसूल होता है। प्रोग्राम में संगीत में हूं शान, आई सी यू अदर साइड ऑफ दिस कमर्शियल।
1: कैन यू अफोर्ड टू मिस माय शो? आई बेट यू कैंट। Curl of headlines, adventure of music, passion and possession of what you want on your radio. Keep listening, keep driving.
0: Welcome back. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया 94.7 FM प्रोग्राम संगीत, हर फ्राइडे को मेरा और आपका साथ रहता है। आज प्रोग्राम में मेरे साथ गेस्ट हैं नमल, नॉलेज सिटी पाकिस्तान में मियांवाली में एक यूनिवर्सिटी है, बल्कि अब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए उसे नॉलेज सिटी कहते हैं। बहुत ज़माने पहले इमरान खान साहब ने, जो जानते हैं पॉलिटिशियन एंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन उनकी जो उससे भी बड़ी जो पहचान है दुनिया में वो ये है कि उन्होंने काम बहुत किया है, वो पॉसिबल इम्पॉसिबल काम जो नॉर्मली हम कहते हैं कि यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यूनिवर्सिटी बनाना है। और इसी तरह से जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के पूरे एक पूरा एक जाल बिछाया उन्होंने। अच्छा, नमल के बारे में, ये एनुअल इवेंट है, कनाडा के बड़े शहरों में होता है, कैलगरी में, वैंकूवर, टोरंटो, मंट्रियल, ओटावा। आई हैड द अपॉर्चुनिटी पास्ट में कि मैंने पूरे शहरों में जाके इन शोज़ को होस्ट किया है, तो मुझे आइडिया है कि कितनी पॉपुलैरिटी है, कितने लोग इंगेज होते हैं, व्हाई दिस कॉज इज सो इम्पोर्टेंट एंड क्लोज टू आवर हार्ट। अब आज जो मेरे पास गेस्ट हैं, पहले हम ये करते होते थे कि जाहिर है जितनी यहाँ पर टीम है डेडिकेटेड, वो आती थी, बात करती थी कि क्यों शो हो रहा है, कितने का टिकट है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप और सारा कुछ। लेकिन आज मेरे पास गेस्ट में यूथ जो हमारी टीम है वॉलंटियर्स की, उसमें से तीन बहुत ही ब्रिलियंट बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं। मैं चाहता हूँ आप सबके माइक खुले हैं, नंबर 4 भी मैं खोल देता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर मौजूद। ऐसा करते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन मैं कराने के बजाय पूछते हैं कि लीना आप बताइए क्या हाल चाल है, कैसी हैं, और अपने बारे में बताइए दो लाइनों में।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज लीना, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम ए सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एंड आई हैव बीन वॉलंटियरिंग विद नमल फॉर 3 years नाउ। And yeah, I'm really excited to talk about my experience.
0: All right, Lina, University of Calgary University mein hai aur medical kar rahi hain. Ji, Dua hai next mere saath. Dua, kya hal chal hai, kaisi, how are you? Tell the listeners about yourself.
3: Yes, Assalamualaikum everyone. My name is Dua Azim, and this year I'll be volunteering with NUML as part of their youth team. I'm also a student at the University of Calgary, and I'm glad to be joining you all today.
0: Great to have you. And ready to talk?
4: Assalamu alaikum everybody. My name is Aliza Ahmed and I am volunteering with NUML for the third time this year as the volunteer coordinator. I'm a university student at Mount Royal University and I'm doing

0: I'm in the sociology and psychology program, and I'm so happy to be here. Thank you for inviting us today, Sean.
1: No, you're very welcome. मैं बात कर रहा था प्रोग्राम जब हमने शुरू किया कि दो तरह की हम इसे नमल की भी बात करते हैं और एक जनरल डिस्कशन भी बना लेते हैं because people like discussion, गाने सुनते रहते हैं. वो ये है कि आप तीनों यहाँ आपकी बर्थ हुई है तीनों इधर बोर्न है अच्छा
0: यही
1: अच्छा अब जो नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना दो तरह की यू विल सी लॉट ऑफ पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि ओ माय गॉड हम बच्चों के लिए यहाँ आए थे बहुत हमने सेक्रीफाइस किया ये है वो है और बच्चे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और इनको बैक होम का पता नहीं है और ओ माय गॉड उनकी आप ये बात सुनते हैं उनको फियर है कहीं ना कहीं बिकॉज दे थिंक दैट दे लूज देयर जनरेशन और जो रूट्स जिसके लिए वो आए थे वो कहीं डिस्कनेक्ट है अच्छा दूसरी तरफ आप तीनों बच्चियां हैं यहाँ पर यहाँ की बॉर्न है आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बैक होम के यहाँ प्रोजेक्ट्स में टाइम डालें एफर्ट्स डालें और मनी डालें एंड ऑल दोस सो आप उस साइड पे हैं इक्वेशन के कि जो उन प्रोजेक्ट्स को और उस कल्चरल एक्टिविटीज़ को एजुकेशन वाली हो फिलंथ्रोपिसी हो उसमें आप लोग इंगेज हैं तीनों तो इस बारे में मुझे बारी बारी आप बताइए कि व्हाई डू यू थिंक लीना दैट सपोर्टिंग नमल is important and why do you think that you took time out every day's life means aur aap isme jaati hain meetings karti hain event wale din kaam karti hain
2: yeah absolutely for me it has always been about equality and equal opportunities so just like you said you know my parents they came here they wanted to give me and my sister a better education and alhamdulillah they have but here you know it's all about equal opportunity those who work hard get rewarded in pakistan You don't always see that, and I find that NAMAL is one of those unique places that genuinely gives their students equal opportunities. It removes barriers, financial barriers. It removes any societal norms. For example, NAMAL is 51% female students, which is a huge achievement. Even some universities here can't say that. So it's always about equal opportunities. So I genuinely think NAMAL is a great cause. That's one. The second is, like you said, is about connection. You know, we, you know, are not always able to go visit or we are not able to, you know, live in Pakistan for long periods, but staying connected to a cause that directly helps people in Pakistan and they help us as well, I think is a way to stay connected from the other side of the world.
1: And you brought up a couple of very important points. 50-51% लड़कियां हैं एंड इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये कोई मैट्रिक या ग्रेड एट नहीं है व्हेन यू से गर्ल्स 50% अगर वो हाई स्कूल तक हैं तो इट्स ओके बंदा कहता है जी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन इक्वल पार्टिसिपेशन है गर्ल्स की एजुकेशन में बट दिस इज हायर एजुकेशन हैविंग गर्ल्स 50-51% इन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स MBA BBA एंड ऑल दोस प्रोग्राम्स दिस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट
2: Exactly.
1: कि आपने बेसिक एजुकेशन तो सबको दे ही देते हैं पर अगर आपकी लड़कियां बच्चियां उधर तक जा रही हैं दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस दुआ आप बताइए आपका किस तरह व्हाई डू यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट एंड वी शुड सपोर्ट दिस कॉज
3: सो एज अ पाकिस्तानी यूथ हियर इन कैलगरी I feel very grateful, alhamdulillah, for the access we have to education. We have free schooling, scholarships, networks, and opportunities that many students in underprivileged areas have to fight much harder for. For many of us, education has not felt like a barrier, and that itself is a privilege. But students in underprivileged areas of Pakistan have dreams and ambitions just like we do. They want to study, support their families, and build better futures. And that's why it's so meaningful that youth here in Calgary are also supporting this cause, because it's students helping students.
1: Yeah. और जो आपका ये point मुझे बड़ा अच्छा लगा कि things you take for granted. यहाँ पर free education है, आप school जाते हैं, सारा कुछ. ये dream है कुछ बच्चों का. छोटा dream नहीं. बहुत बड़ा ड्रीम है उनकी लाइफ का कि हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में जा सके जो हम यहाँ बहुत ग्रांटेड फॉर लेते हैं और उस वक्त रियलाइज करना जब आपके पास ये सारी प्रिविलेज है किसी के लिए सोचना इट बिकम्स इवन मोर मीनिंगफुल थैंक यू दुआ एंड लीजा आप बताइए आप यू हैव बीन नॉट जस्ट इन्वॉल्व इन जो टीम है हमारी यूथ की बल्कि आप उसको लीड कर रही हैं to

0: expect a very organized event, inshallah. You know, like Aliza articulated very well, we have so many volunteers. Every year we grow, which is so impressive, not just the youth, but the adults as well. So we hope this year everything will be streamlined, everything will be organized. You know, we have a great host, Sean Uncle, to host the fundraising, some speeches, and again, to see the impact of where your donations will go. And then, of course, we'll end the night off with some delicious food as well.
1: Perfect. And Dua, aap youth ka, pehli baar aap is team mein nazar aayi hai mujhe?
2: Yes.
1: Yeah, I know you have other, you have been participating in other community work. Dekhna bhi aap aayi hai iske andar. So, are you excited ki is baar aap youth ka hissa hai aur Namal ka hissa hai?
2: I'm really excited. I've seen some amazing things from past NAMAL fundraisers. I've heard this year Faisal Qureshi is coming, which is really exciting. But most of all, I'm really excited about the cause. Education is something that's really important to me. And I'm in the same phase in life where I have goals, dreams, ambitions, and I'm looking to pursue higher education. So helping other students that are in the same boat as me and that deserve the same opportunities that I have here is really important.
1: Great. So, Dua, jaise humne mentioned, Faisal Qureshi is actually been acting for last very, very, very many years. Aur bahut successful. They're like literally hundreds of dramas or plays hain jispe unhone kaam kiya hai, commercials and films hain jisme unhone kaam kiya hai. Unka naam aap google karenge, listeners koi bhi Faisal Qureshi likhe to aapko nazar aa jayenge. He's very popular. Aur unke saath hai Ijaz Aslam used to be a very popular model. Mm-hmm. Then he became actor. Aur meri kuch yaadein hain Karachi ki unke saath Ijaz Aslam ki jab shaadi hui thi main unki mehndi mein gaya tha.
2: Oh really?
1: Ji. जब उस दिन शो में भी बात करेंगे तो उनका उनकी जब मेहंदी थी सो आई हैव अ लिटिल बिट टू रिलेट मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड होते थे यासर अख्तर एरिड जोन के सिंगर थे यासर अख्तर और उनकी वाइफ थी मोना तो यासर वाज माय क्लोज फ्रेंड एंड मोना से भी अच्छा ताल्लुक था मोना यूके से पाकिस्तान में शादी करके आई थी तो कराची में हम यू नो द टिपिकल टाइम था कॉलेज का हम रातें इधर गुजारते थे होटलों में जाते थे फिरते थे सैर करते थे इजाज से मेरी नहीं थी दोस्ती यासर की थी सो यासर ने मुझे कहा कि आप मेरे शादी में इकट्ठे चलते हैं मुझे जाना है कहीं मेहंदी में तो द शादी वाज पीआईडी से आपको कराची से कोई वाकिफ है से नहीं आप हैं सो पीआईडीसी जो पीसी होटल और पीआईडीसी का जो एरिया है उसके पास एक लॉन होता था उस लॉन के अंदर था मेहंदी थी बहुत शानदार मेहंदी थी तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट तो इजाज जो है ऑस्लो हिज गुड एक्टर ही वॉज नंबर वन मॉडल फॉर इयर्स इन पाकिस्तान में उस जमाने में तो वो दोनों आ रहे हैं उनकी एक और अच्छी चीज ये है कि लेटली उन्होंने अपने आप को डिवर्सिफाई किया है नॉट जस्ट एक्टिंग वो छोटे छोटे स्किट्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे हैं मैसेजेस होते हैं उनकी फनी वीडियोस के पीछे कोई ना कोई सो दे हैव बीन वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल नॉट जस्ट थ्रू देयर रोल्स बट एज सोशल मीडिया पीपल और पढ़े लिखे हैं तो इसलिए उनकी ये जो फनी हरकतें होती हैं उसमें ऑलवेज कोई ना कोई मैसेज होता है कम्युनिटी का दैट खाना बहुत अच्छा है मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें खाना बहुत मजे का मिलेगा आपको मैग्नोलिया में लाइक ऑलवेज एपेटाइजर होगा खाना होगा वेरी फ्यू स्पीचेस कुछ वीडियोस फैसल और इजाज के स्किट्स होंगे बातचीत करेंगे आपसे तो जो लोग नमल का इवेंट अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि बहुत कट टू कट बहुत हाई क्वालिटी इवेंट होता है कोशिश करते हैं टाइम से शुरू हो और ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है कि वाइट गाड़ी किसकी खड़ी है पीछे कर लें लेडीज इधर चले जाएं बच्चे इधर चले जाएं बहुत डिसिप्लिन और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता है तो आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी इवनिंग गुजरने वाली है वहां पर ए सोशलाइजेशन का आपको टाइम मिलता है दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑडियंस होती है कम्युनिटी में से सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विद सक्सेसफुल पीपल विद नोन पीपल अगर आपका बिजनेस है तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होगा खाना बहुत अच्छा होगा एक अच्छी शाम फैमिली के साथ कोई ऐसी चीज नहीं कि आप अपने बच्चे फैमिली को ना ला सके एंड लास्ट कि इट हैज अ कॉज बिहाइंड एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक पर्पज है एंटरटेनमेंट के साथ साथ तो 6 जून 2026 दिन है सैटरडे का सैटरडे का दिन है और मैग्नोलिया हॉल में और अब हम ऑलमोस्ट गिव एंड टेक 2 weeks अवे हैं फ्रॉम द इवेंट आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए गूगल कर लें फेसबुक से आ जाएगा आजकल मुश्किल फोन करने की जरूरत नहीं है जस्ट गूगल करें आपको कैलगरी के शो की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी स्पॉन्सर करना चाहते हैं टेबल लेना चाहते हैं टिकट लेना चाहते हैं और यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क नमल कैलगरी इवेंट करें या कैलगरी फंड रेजिंग करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ

0: a special gift.
1: Perfect. और 100 की तो बात ये है कि possibility भी है. अगर आप कहें ना कि पहले तीन लोगों को तो बंदा give up ही कर देता कि not a chance. मुझसे कहाँ आया जाने रहे. लेकिन 100 का मतलब ये है कि yes, you have an opportunity कि आप on time आए, appetizer enjoy करें, socialize करें. एक और चीज़ मैं seriously आपको बताऊँ, ज़िंदगी में learn ये किया है मैंने. और ये सेल्फ लर्निंग वाली बात है, बुक्स में बहुत पढ़ा था, नहीं समझ आई थी, टीचर से भी बहुत कहा था, वो ये है कि जब आप चीजों पे टाइम से थोड़ा सा पहले चले जाते हैं ना, एक तो स्ट्रेस फ्री होते हैं, पार्किंग अच्छी मिलती है, और स्ट्रेस ना होना इतनी बड़ी चीज है ना. आप हांप रहे हैं, पहुंच रहे हैं, मैं गार परेशान हो रहे हैं, मैं लेट हो गया. अच्छा, दूसरा आप सोशलाइज करते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व बेटर करते हैं, अब्सॉर्ब भी बेटर करते हैं चीजों को. ठीक है, खाना अच्छा आपको मिलता है, शुरू में आप पूरे टाइम से एंजॉय करते हैं, सो मेनी बेनिफिट्स. आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि लेट होने से जितना हम स्ट्रेस से गो थ्रू होते हैं ना, दैट 10 मिनट्स व्हेन वी गेटिंग लेट फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी मीटिंग, वो बहुत किलर है हमारे हार्ट के लिए. सो ये तो अंदर साइड नोट पे था, लेकिन आपने, नवल ने पॉसिबल ये कर दिया कि चलो एक थोड़ा सम स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा. लिसा, आप ये बताइए कि दोज हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, उनके बच्चे या कोई खुद अगर सुन रहे हैं, किस तरह से इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू वॉलंटियर?
0: वेल ऑफ कोर्स दिस साइकिल, सिंस देयर इज ओनली 2 वीक्स टिल द इवेंट हैपनिंग, वी डोंट हैव स्पेस एज ऑफ राइट नाउ, बट प्लीज रीच आउट टू आवर नवल टीम ऑन फेसबुक, और when you come to our event potentially, reach out to them and let them know that you're interested to volunteer with us next year. We're completely open and we want our youth to be involved in causes like this.
1: Aur jo volunteer certificate milta hai namal, jo ye jo event hai ye friends of namal canada ke under hota hai, ye bhi thoda sa main add kar dun. Iska matlab ye hai ki ye jo charity hai, it is registered or you know, it works under the regulation of Revenue Canada. तो आपको tax deductible receipt मिलती है, आपको certificate मिलता है volunteer work का, hours का, जो आप अपनी education के लिए, admissions के लिए, different चीजों के लिए use करते हैं, तो ये सारा कुछ मिलता है. And lot of learning, obviously, lots of learning.
0: Absolutely.
1: When you work with your colleagues, like young colleagues. Lina, आप और बताइए इस event के बारे में, anything you would like to add, anything we think that we missed?
2: Yeah, so get your tickets soon. We're 80% sold out. It's going to be a very exciting event. Like we mentioned, lots of socializing opportunities for those who have businesses. Maybe you're starting a new business. Maybe you want to tap into some different customers. This is a great opportunity. Those who want to sponsor or those who just want to socialize, buy your tickets soon before they sell out. The event is in 2 weeks, so there's still some time left.
1: Okay. जो भी आप मुझसे जवाब देना चाहे, स्पॉन्सरशिप का आपने जिक्र किया, फॉर बिजनेसेस का, कैन दे स्टिल अपॉर्चुनिटी है, अभी भी स्पॉन्सर कर सकते हैं लोग?
2: Yes, absolutely. We are always open to sponsors. There are different tiers of sponsorships, you know, different commitments. So please reach out. We have an excellent sponsorship team. They're happy to give you all the information. And our goal with sponsorships is that we want to support our local businesses in Calgary. So please reach out and we're happy to talk with everyone.
1: Perfect. Anything, Dua, at the end, anything you would like to add?
0: So really looking forward to seeing everyone there at the NUMMEL fundraiser June 6th, 6:30, in 2 weeks on Saturday.
1: Perfect. And Lisa, you would like to add something?
0: Rumor has it that you could receive not only a mug with the NUMMEL logo on it and maybe a special person on the other side of it, but a notebook with the NUMMEL logo on it. So maybe be there first.
1: Perfect. So conclude करते हैं. NUMMEL event June 6th, 2026 Magnolia Hall में होने जा रहा है. ये annual event है, हर साल होता है, dinner होता है, socialization होती है, good quality food, entertainers आते हैं, और cause है इसके पीछे education का. अगर आपने ये event attend किया है past में तो you know the quality of event, और अगर आपने नहीं किया, this is one of the finest Calgary का event होता है, जो बहुत टू द पॉइंट, बहुत एडिटेड वर्जन होता है. नॉर्मली लोग इवेंट्स में इसलिए नहीं आते कि यू नो इवेंट्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चीजें अपनी मर्जी से हो रही होती हैं, डिसिप्लिन नहीं होता. सो अगर आप इस तरह का इवेंट ढूंढते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जहां आपको मजा आए, जाके आपको लगे कि यू नो इट वॉज अ क्वालिटी इवेंट, सो दिस इज द इवेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, NUMMEL Knowledge City लिखें, NUMMEL Calgary Fundraising लिखें, NUMMEL लिखें, कुछ भी लिखें, आपको related information Calgary की सारी आ जाएंगी. So Dua, Lisa, Lina, thank you so very much for taking the time out and being my guest.
0: Thank you so much for having us.
1: Yeah.

0: amor. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio, Sean ke saath.
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 Sonic Insurance.
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757
3: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स
5: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ
6: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8257 760983 ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ

0: Let an entertainment melt in your brain.
1: मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? जेनी कहो ना।
2: क्या कहूं? जो मैं कहने आई थी वो तो तुमने कह दिया।